ए उठा साठ का नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरि तन से भज लो रे हरि राम नाम है जग में।

ए अमारो नाथ की अमारो कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

मोहे जग में साथी भज लो रे हरि। हाँ आसाराम कहत हैं भाई।

करो हरी जगत जगतारे भजन करो हरी जगत जगतारे भजन।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। ओ जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।

0: शाही पकवान रोज रोज शाही पकवान बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
1: कुछ करिए मंत्री जंकी।
2: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोई से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोई।
3: अरे मंत्री चमकी आप
2: बताओ रसोई, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
3: शाही पकवान और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ। मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
2: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
3: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज कुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
2: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
4: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
0: महाराज कुगली की जय।
5: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
3: ये लीजिए महाराज।
5: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
3: जी महाराज।
5: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
3: जी महाराज।
5: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
2: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
0: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
5: भाई वाह,
1: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
5: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
0: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
5: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही

0: तरह खाया जा सकता है। और आज मैं, मम्मी और शरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। वो बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, हरा धनिया, मिर्च। बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा। हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
1: कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुनो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
3: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊं?
2: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
3: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
3: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
1: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला, केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार, आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
4: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
5: अब्दुल रहमान।
4: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
5: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से

0: उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
0: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं, मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
2: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जियां अच्छी नहीं लगती?
2: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
2: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ, हाय, आपका नाम क्या है?
3: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन सा पौष्टिक खाना बनाते हो?
3: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ, हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
4: पालक।
1: ओह, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
4: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
5: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
3: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय
6: बाय। मजा आया ना दोस्तों।

0: दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। भाई बात क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़ भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़ सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती है, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: जी, तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पनीर पनीर से

0: पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
0: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है, तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना, तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले, और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनाबे बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ये दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो उसके बारे में तो है कि नहीं। सो अपन एक कार्यक्रम से आज आपको ले चला थेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उसके बारे में भी अपन और इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं कर रहे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते हैं, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

सुबह और मिलके न धसान, जिनको पानी सुधा समान, पर्वत जंगल आलीशान।

भगवान प्रेम भाव के भगवान वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदेलखन प्रेम भाव के भगवान वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदेलखन भारत माता को हृदय दोहे जीवे हमें गम

0: पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन, संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओ, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर, माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम, जो पुजारी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की। फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का

0: वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यह एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ सात झरने हैं, सात झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया लेकिन पट 9 दिन में, 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
0: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 22 से 51 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं। जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही और जन्म कोटि अघनाशे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए, जब तीनों देवताओं को भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 22 से 51 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति है वो सब दक्षिणावर्ती है, सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी से अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक, पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लित दास जी बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें तय किए हो?
2: यही किए।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसो महसूस करत यहाँ जन्म ले के ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहे चाह रहे यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं। देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से घटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे हैं। और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
2: उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
1: तो साथियों, अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धनकुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने 9-4-2-5-1-4-1-7-2-6। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारी इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी को, लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवत राजन के कुंवर
2: आओ
1: और एक हती बानिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हती राजा के कुंवर,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ
1: अच्छी आस है उनकी दोस्ती।
2: हाँ
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम का, तो के पढ़ लिख के जो भी याद है सुबह को चले जावे।
2: दो ही के लोग,
1: दो ही के लोग शिकार भी अपने घोरो मस्के, भी अपने घोरो मस्के।
2: हाँ
1: अब जब वन में पहुंच गए।
2: हाँ
1: तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बर्ती तुमने फिर कर गया।
2: अच्छा
1: तो कल के दिन में भी बोले बोले कल ले बीजन बोले। अब बीजन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे। अब राजन को बस बीजन थे अपने बानिया कितना शिकत बीजन।
2: अच्छा
1: अब भी है बादशाह बीजन और बादशाह दोनों जने हो। कह के राजा हुई बस बीजन ने जी से बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाए, कल कवैया कहाँ के जाने छटे कल ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा
1: अब जब नाव घे गो से नाव खो रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सुतकरा है, फलाने के पक्या थे,
2: जा सही के
1: नाव खो सब पतो है। नाव कुआ तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: सो बस अब बीजन के बार बन गए, अब राजन के बादशाह के बनने। सो बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोले कर ले सुताजा का बोले कर ले कहिए राजन के राजा बोले कर ले बीजन तो जा रहा ससुराल है, हमारा हम कैसे चली जावे। अरे बोले कर ले राजन के राजा आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं ना।
2: अच्छा
1: हाँ बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा
1: के नाव होगा बादशाह होगा बीजन हो गए, अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चली ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी तो बा में बीजक लगवाओ तो के जब बीजन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा
1: गली में से बटी हटी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीजन पिया पानी। तो बीजन गौ पानी पीवे के लाने तो पानी बीजक बाँचो।
2: अच्छा
1: बीजक बाँचो वामे सुख में गली अलग अलग। बीजन हो बदमाश बीजन बदमाश हो।
2: अच्छा
1: तो बीजन ने का करो किस्ता के पानी पी के बावली में और वह बीजक को भरा दो
2: ले उसका।
1: अगर हमारे अगर जब बीजक को जो राजा पानी पीवे आ रहा तो जब बाँचे ले से संग छूट गो इसे कह हमारे जी ससारे चलेंगे
2: चलेंगे
1: तीनों जने
2: तीनों जने।
1: जा तो बीजन बदमाशी के रहवा तो बस अब राजा पानी पीवे गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में है सुबह में।

0: राजा ने अपने खोबा निकले उलीच उलीच के भाई
1: धोदाओ
0: धोदाओ और फिर उगे बाँचो बाँचो बाँचो बाने में प्रधान पूरो लिखो कि जा राजा ने कितना रखो रास्ता गई वो जा बीजा ने कितना रखो रास्ता गई दोनों जने तो बोले कहने क्यों वे बीजा बोले कहिए राजा ने के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल्ले पुरखन को बीजक ने मिटा दिया है हट कर ले कि हम आप ससुराल जाते अपने ससुराल तो बोले कल्ले उनकी शर्तें लग गई बोले कल्ले जो पहले आज विदा करा के वो जिस बाउली पे ठहरे क्या दिन किसी को बीत जाए
1: सही सही
0: तो बस बेटे तुम भी अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कल्ले वो जी ससुराल का नाउ बोले कल्ले जी राजन के संगे चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी वो हेल्पर चलते हैं कल्ले जी तो राजन की कुमार और सताई घर का दो जने जा रहे हो गिरे अपनी ससुराल चले रहे अब सब राजन के कुमार जा रहे सो बन कजली में पहुंची तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास
1: अच्छा
0: बोले कल्ले सताया कब बोले कल्ले कि ये राजन के राजा कल्ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकलते जा रहा है इसे पानी को देखो बोले कर राजन के राजा 12 कोस में ना है पानी ना माय पानी अपन वन में हैंगे बोले कल्ले अरे क्या क्या बोल रहा है नाग का के बोले कल्ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पर चढ़ी ऊपर देखते भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चली तो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल्ले राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जरूर बोली कल्ले चल तो ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी और चल अरे खुली जाए सुबह जन में दे पाई खुली से जीत गए कि आना फिर बाहर आराम से बिन नगर चले गए तो उतरे काकस्ता हाथों के जोनवर लड़की राजा ने खून भी आई थी वो नदिया में स्नान कर रही
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही तो सुताई अक्का ने कहा करो झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए बोले कल्ले सताएगा का बोले कल्ले ये राजन के राजा बोले कल्ले उस तालाब में पानी है सो ठीक है तुम ले आए बोले कल्ले महाराज जाके ना पूछो पानी पी लो तुम तो बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया होते ऐसा जल्दी होते को कि मचो सचो भर के आ गए बोले कल्ले महाराज कल्ले तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सपर रही है तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचे सचो भर लिया है वो हम खुद भी आसन मर जा रहे अरे बोले कल्ले बगरा भी सुबह पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल्ले सुधायक का बोले कल्ले कहिए राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करे अपन ताए को और मुंह करे ताला ताए को बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: नवकक्का ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जावा,
2: राजन ने कही जावा,
1: राजन ने कही जावा। फिर कही उनने, अब्बा बोले जल में ढाड़ी जो।
0: अच्छा,
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही,
1: जो नहा रही बा बोल रही है। हाँ।

0: कायका बोले कल राजन के राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाले
1: बता
0: है
1: सही कही
0: बोले कल नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो
1: हाँ।
0: भूले मोसा।

0: कितने गली बता दो सो काऊ के द्वारे लग
1: आप पहुँच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दिए अब जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए इनको बदल शरीर है कैसा मुँह करे मायक हो और पीठ करे इंताक हो कही के अब जाइए से बताया सुनने के बाद माँ से बोली

0: अरे भाई जवाब मिल जाओ।
1: अच्छा
0: बाद में मिली ना बताई
1: हाँ।
0: ना बाद में बदन काटो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भी कर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही रही गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ गाँव के लाने तैयार। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचे जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफर और सफर खूर के और बाप ने जेल चली जो ने ये हती से जात है भवन द्वारे छोटे लड़का को देखो तो ससुराल सुबने द्वारे उनने अब पहुंची घरे सुख गई घरवाऊ को बंद अब भाभी से बोली भी
1: हाँ।

0: साहब तुम
1: भाभी ने कहा ऊंचे कंदीला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला
0: अब लुबग्गा आ गए तुम
1: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा
1: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दी की लाने तैयारी की तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
0: अच्छा
1: बोले कर लगे हो अपन को कग्गा गेल कुमार बना दी
0: बिल्कुल
1: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसके यहाँ वाला थे
0: सही कह रहे
1: अब खुला खुला थे अब नहीं खुलो हमें तो सलाह हो गई दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की सुबह सवती से उनने व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और आज्ञा दे गई भोजन के लाने तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सूर ने चाहे एक ने चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बने ठना ना जवाब ठोको
0: अच्छा
1: ठोकनी ठोकने ना तो भेज कैसे खोलेगा
0: हाँ, सही है।

0: में टाटी सरकार के मोए कच्ची अब भूख खुल गओ के जई है हां
1: सही कह रहे
0: जब जब बात
1: दही के होते
0: जई है जब बाबा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने मां टाटी माटी सरकार के ओ बस सुता जा काने पे झटपट जो कछु राजन तेरी तो बा बांधी ओ बापनी बांधी ओ बस टाटी माटी जो कमे लग का के कर काए काए राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल महाराज मैंने अपनी टाटी धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आया
1: जैसे टाइम लगता
0: जैसे टाइम बोले कल सुन ले कल सुपता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो इस पापन को मिलवाया इसको मिलवाया सुबह सुबह तैयार हो गए जहाँ से करा वो उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कस रहा सुबह ऊपर को पले चवन पीटते कस रहा
1: अच्छा
0: वो पले चा पीटते है कि दिन तो मुंगी आगे बड़ी आगे
1: हाँ हाँ एक भी दे रहे
0: एक भी दे रहे जाना क्योंकि कसे
1: जो
0: सवेरों भाव जाए तो बस जो राजन को हाँ साहब चल भी हो गए तो राजा का कले कि क्या है जो ऊपर का पले चा नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के जोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे निकल के भाभी पूरा पड़ोस की जनी ने दुहा रेशम पाटे को जले दियो रे चटे का।

0: देखो रिश्तेदारी है वो जा तुम दिन चटकाओ और टूटे से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: गांठ पर जाए
0: गांठ पर ये जाओ मैं
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो ने परोस की
1: ने परोस की ने कही जवाब हो
0: तो परोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर वेर को संग है
1: सही है
0: बेर भर के जाओ तो उनने हकी सो जैसे कछु पुटिया पर मुद की कोई रानास में ले गए
1: फिर कमाई खोन पुटे पार या ले गए
0: मैं कहूँ वही जाम उनकी राना सकी फिर पहुँच गए भाई सतखंडा पे पहुँच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पे नहीं थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो उनने बिस्जा की आवाज की सुनकर मोर भूल गई बन गई और दुहा दे रही

अरे भोर जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना नहीं कर बाने फिर दो जाकर कहो।

खोलो कंठ के बाद लेकिन उनमें नाव से कही के बाद नहीं खुल अब जो जो है सुनो साधु ने साधु ने सुनो दोहा साधु के रामन से संक बजे सा

0: शंख बजे से साधु जगे बम घले रहे झूल। अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब कुछ
1: सही है का हो
0: का हो
1: कत्ते दुनिया भगत जा मेरे विश्व ना कर जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पता होगा कि रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दो हाँ कह रही हो।

0: से लड़ की भाली रे सो मेरे पे ब्याए जी। अरे ऐसी सासों का काम की हती तेरी कूखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए के लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोलती
0: ये तो कर गया है ना यार, सुबह पटक थार और भी भगी जब थार पटक के भी भगी आई सुबह अपने मेरे भी अब रात को समझ जब कहाँ जा रहा है जो सवेरे हो सोने घोरों मस्त को उस चलिए। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है जो भी है तेरे बच गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीना सुनने सजाई तो उन्हें बिदाओ उनकी कई बार उन्हें खाना पीना सब और महीना भर के लाने रखता हूँ। खाती जब घर चले गई बस आओ अब भी हती सो अब पीना सकावे बारे हती सो भी ऐसे गांव के बारे करी तो उनमें मार जताई तो भी भग के छोड़ के अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काल कबाजी ने हकाई सुबह हका के वो बस सब कहीं ऐसी वर्ष चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पीलो रहे से उतरे बस गए, शाम हो गई से बस गए। बस के में अब बोले कल्ले सुनो सुधा का बोले कल्ले का कल्ले ही पापन को नहीं छोड़ जाने यही रुकता है। अब बस सुन रही थी, बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सुधा यक्का से कही के सुधा यक्का ऑर्डर दौरानी है के पति लगाओ तो सताई का आपका गैस तीन पात्र में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को चौबे ये तीन पात्र में कहाँ खुल जाओ बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर दिमाग तो रानी की फार के मार फिर अब बस पात्र लग के आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि जी भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का करें से जिस सुबह घोड़े की पछाई की ये रही एड़ बजट बात बटोर बजी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मान लाए बटोर कि ये भगे तो जब ये टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हमें इसे कचू किया ले सुबह सुनने के सुबह घोड़ों भंचाई रात भाई को बढ़ाओ घोरी में सुबह डूब रानी

चैनल दिखती हर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे न भई गांव के रहे, अभी सुनर बारे के चले गए। ये अपने भवन को चले गए और रानी ने अति से बाने हका हका को रानी को गाड़ी हकाऊ थी हकाऊ थे रानी तो हका से गया से कचुवती तो राजा गिलंद की बाग में ये जा रहा जा रही से अन्य भज्जा घर वाले ना के तूपी माई की बोलनिया तूपी रानी वो तो मालिन है मालिन बोली बोली कर लेगा अरे कौन कहाँ की पापन आगे कहती है तुमने। एक मोर रानी ने वो मालिन को बहू में भीतर बीरा दिया जाए अभी तो राजन की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटो तो रही है की तो बस अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सुई ऐसे ही कछु बिलादना हो गए दुकान दुकान। तो एक दिन अब उनकी बेटी हटी राजन की जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमती जमती नाव तो बेटी को सुबिन बे फूलन की तुला तो लगती हुआ सुबह मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन को ले जावे। सो राजन ने हकी सोची के मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमे आए तो बगीचा घूमन गए भी सोचे बार राजन की लड़की रहे रहे राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो जाहे नहीं है, है तो को राजा की लड़की सुबह जैसे तैसे अपने घरे पहुंची घरे पहुंचे सो घरे पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ बादशाह ने हकी सो राजन की पिया न्योती बाबे न्योता कंकुम अबे न्योता पिया रखो। सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हकी बादशाह सो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें पैसों बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की। सो बिन ने सोची अगर बिन तो हमारे खुलवा लिया उसी बन में ना छोड़िया उसी भाई ना करती हवा सोने हर सांस ले। सो बीजन ने सोची के कोई बात में खरकसा है राजन की बात में कोई खरकसा है सुनाओ से पूछी जावा बोले क्यों खवास रखा बोले कले कहिए राजा कले कारण का है इको राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कले ये रानी को बन में छोड़िया और भाग गया। सो उनने अति से घोरो उनने सजो और बीरन ने सजो और पहुंचे वो निकल ले चलो बताओ कि कौन छाड़ में छोड़ी फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह ये गए दोनों जन नाव नहीं गए वे दो ही गए से वो निकल ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धर ली सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद के बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतिया जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन में गए सो उन्हें भैया मालिन ने उन्हें घर आए बोले कल क्यों रे कहाँ की हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बात वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले। हाँ सुबह आराम से मालिन को साझा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा गिलंद की अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें उपद्रव सारी करी

राजन बोले कले दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे, उनमें सब नाश कर दो बगीचा को, तो उनमें छिड़ जा चलिए तुमको राजा बुला रहे। बोले कले हौसा जब तभी ऊंची हाथी भीलपुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए अपने अपने घोड़ी लेके।

0: अब उन्हें किसो दसला हो के वह सकाय से काम लगाओ अब वो रानी ने डीरा जाओ डीरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलन ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ बोली कर ले नहीं ये राजा गिलन को बात करने चल जी और जी मकान गिरने चल जी सुबह ने कि तो ठीक है सुबह जो बन जो काम लगो सुबह अपने मजूरी खोने की जाओ जावे सुबह रानी जो बबी थी अति से छाजी तो दातन कर रही थी सुबह जग लाई थी बबी जग बबी लूटा के कर रखती दातन वो लूटा में लिखो है तो सुबह बबी जग को गए जो बात साल में बात ले बीरन बात ले बात साल में बीरन ने बात ली बोली कर ले ठीक है बोली कर ले कह तुम तसला पटकत पटकत वो ते सार पांच ही की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं कही कि सुबह तुम ना तुम सानो हम झंडा रहे सुबह गए डाल रहे सो आराम से गए डाल भी के लाने से तन कुछ तसला में से गिला पहुंच गए वो इमेज दाओ बेटी में दवा में जो राजा गिलन की लड़की सो उन्हें अच्छी सो अब तो खिलाड़ी है ते सो उन्हें बोई लूटा दाओ बोई लूटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा ले लाओ ये गेंद की बल्ला के बल्ला लूटा उन्हें बाद में पहुंच सुबह सुनने फिर भेजा छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब भी गए पकड़ा सुबह देख दाग के कर ले कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर कर क्यों इनसे बोलत कैसे हैं बोली कर ले महाराज उतने नहीं हैं मजबूर संजीव तो जो राजा पर बोली कर ले या पर बोली पकड़ लिया सुबह जब फिर गए बोली कर ले आ रहा चलो अब भी नहीं मिल गई थी वो बीजा कुन्ने वहां से लाओ पूरा कर ये कब दो मिल रही हैं दो मिल रही हैं सुबह आते सो लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले और हमसे करे तो तुम काट ले सुबह राजा काऊ समाज में कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगियां एक दिन आ तो बोली मेरे को क्या के पहुंचे गए सो राजा ने कही बोले कर ले कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कर ले फिर वह लड़की की शादी करी उन्होंने उनकी रानी ने हती बात से हो गए।
1: देखो दोस्तों जातो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खुद सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

आखिरे अपन खाजी बताए अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: कई श्रोताओं को भैया अपने काशी राम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नोनो सो कार्यक्रम लेके आए हैं। जी को भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैया की बातें करे और सुने। और यही क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करे और इन जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को। जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: तो भैया अबे सुनो, अपन सब जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन खा गाओ के सुन बताओ है, और अपन सब जन ने सुनो है। अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके रे विवाह हो दादा?
2: सेना से पूर्व पटक ग्राम सेना जिला टीकमगढ़ तहसील नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे थे?
2: ये हल्को हल्को काम कर अपने दो बच्चे देखे ना बस।
1: और
2: वर्कर हम खराब किए काम वाम हम कहते नगर।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाह तो
2: परिवार वाहन से का करते विचार कर जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा था कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आउती है अपन का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिरा हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और पैसे वह समस्या है अपनी?
2: अब वह समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो भी हमें ले आया हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ पे आओ
2: आओ बैठ जाओ जी नहीं आओ थे तू
1: था
2: थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने हैं।
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आपका क्या सर?
2: सेवा खुशामत सब करा थे जनाब जी बैठे अब ठीक नहीं है चला फिर कर लगे तना
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: आप झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो ठीक है। अरे कछु ना कछु ना तो 10 रुपये 15 रुपये उसको तो खर्च है ही आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 रुपये उठा के चल जाती है।
1: दिन भर आपको कैसे कटा
2: था? दो बच्चे उनका दिमाग लगा ले सिगारे सिगारे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं है ऐसी?
2: हाँ
1: जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी का
2: दिक्कत तो देखे के नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांच पा रहे हम मतलब और उसी है दिखा कागज नहीं बांच पाऊ मुझे दिखा सब।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो खावे पीवे की आपकी का इस्तेमाल है?
2: खावे पीवे को जो भाई नहीं है तो खा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
2: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी पापा ही जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारा को मिल जाए दूसरे की जेठानी न मिले देवरानी न मिले ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
2: जब जो हो चाहिए कि शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं आए प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति न आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
2: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में और जो काम नहीं करा प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना हो जाए पैसा टका खर्च ना हो जाए
2: हाँ घरे पैसा रहे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं करना।
1: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चट जी और कैसे रहें चट जी आप का करना चाहो सब जनन से आपको का के वो है
2: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात तो बड़ी बात
2: मतलब
1: शुरू से आप बताओ
2: यात्रा ना कछु
1: यही बात आप यही बात पूछना चाहो शुरू से बता दो आप के आप का के वो चाहते
2: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत ले प्रेम ले लक्ष्मी जी ले सब मतलब नहीं की रूप है जो बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात

0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाती तीर्थ यात्रा हुआ है, अब पैसे नहीं कहते तो जा का अगर है जो मतलब है तो चले जाओ पैसे आगे चले जाए, अब जैसे पैसे ही नहीं जाता कहाँ से जा रहा है, क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है, आँख से कमजोरी हो गई, पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है, पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहू था
0: जी उचाउद के आराम चाहू बस मिल जावे पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने वाले बच्चे को समान खाने दीवे तीन चार सौ को महीना मिल गए तो अपने उम्र खर्च चलाते।
1: ठीक है दादा, जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखो भैया, अब अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते, कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारों धाम करें। और भैया ये तो बातें अपनी अब हथी सो सब जन ने सुनी ही है, लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उनको भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताए तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ, यानी गौ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया सुनो।

मैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गाये है उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

तवैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का केर है। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आओ थे कार्यक्रम को सुनो जी का केर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सब बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हो जाए, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

अकेले अपन खाजी बताए अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार हो तो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे
2: हैं? सर
1: हाँ, दीनदयाल भैया कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: सर सुनवाली जो गीत है ऊंचे पहाड़ पे मैया बैठी रतनगढ़ वाली।
1: ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: हाँ जी सर।
1: चलो भैया, दीनदयाल भैया हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनों?

0: बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
0: ठीक है सर,
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार नमस्कार सर।

0: नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, और बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है। अच्छा, गीत के बोल बता पाए आप?
1: एक गीत कोई गाओ सुनवा दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा, चलो
1: बोल तो हाँ, बोल याद नहीं आ रहा है।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का तो वहां देखो एक बार

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार।

अंशन फल दिया। कहना है कि मांग लाल है बिंदिया फाल है कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद विराजे गोरा।

0: ले शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो, बुंदेलखंड नंबर 10 नंबर 4 साहब।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाऊ से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्कार।

0: माता जी भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुनवा दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवाते हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

देखत ही हर सा गई जो बगिया, देखत ही हर सा गई।

कलियां सबरी पंख पसारे, कलियां सबरी पंख पसारे, ले तन दस

कबूल कबूल करते हैं भोरा बसत मेघ नचत है मोरा ओ बसत मेघ।

नमस्कार बुंदेलखंड, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 और मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना प्यारा आरजे हर्ष। तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है, क्योंकि आज का कार्यक्रम है बेहद खास। हेलो फरमाइश, किसके नाम एक प्यारा सा गाना भेजना चाहते हैं, किस दोस्त को याद करना है, किस अपने को कहना है, ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, संगीत महसूस किया जाता है। कभी कोई गाना पुरानी यादों में ले जाता है, तो कभी किसी खास इंसान की याद दिल याद दिला देता है। तो चलते हैं एक गाने की तरफ, जहां आपकी फरमाइश होगी, आपके पसंदीदा गाने होंगे और होगी उन गानों से जुड़ी कुछ खास बातें। तो जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.74 के साथ, क्योंकि आज आपकी फरमाइश बनेगी किसी की याद, और किसी की याद बनेगी आज सबसे खूबसूरत। चलिए गाने की ओर चलते हैं।

0: हाँ भैया नमस्कार। बढ़िया है भैया। और तो घर में है भैया, बहुत धूप है, 2 दिन बढ़िया बारिश हुआ है। जी, फिल्म मुगले आजम से सुनवा देंगे, प्यारे किया तो डरना क्या, लता जी के जन्मदिन विशेष पर डरना क्या। जी, सभी साथियों को। हाँ जी, अभी घर पर ही है जी,
1: और भाई कहाँ गए थे?
0: सभी हैं भैया। जी, हाँ जी, स्वस्थ मस्त है। बहुत, 20-22 साल हो गया है भैया। हाँ जी, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ, 6 महीने के आसपास हुआ होगा। जी, बढ़िया लगता है, और हम तो हर बार जुड़ते हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।

0: साथियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की खास कार्यक्रम है लो फरमाइश में। साथियों अभी हम सुन रहे थे जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम पिक्चर का ये गाना। और साथियों हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और कॉलर, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो मानवर, सादर नमस्कार।
0: सादर नमस्कार भैया, सादर नमस्कार, कैसे हैं आप
1: जी? मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, रेडियो सुनने में रहता व्यस्त हूँ। और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। पहली बार आपसे वार्तालाप हो रही है मानवर, आप कैसे हैं?
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा शो सुनने के लिए और बहुत बहुत आभार। आज आप जुड़े हैं एक नई आवाज के साथ, मैं हूं आरजे हर्ष। आप बताइएगा जरूर आपको बाद में ये शो कैसा लगा, मैं कैसा लगा, और भैया कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूं।
0: क्या हो रहा है भैया?
1: बुंदेलखंड ओरछा सुन रहा हूँ, बुंदेली लोकगीत सुनते सुनते अभी हेलो फरमाइश का समय हो गया है। काफी देर से प्रयास कर रहा था। हमारे रेडियो श्रोता एक अभी योगेश जामरी जी बिमेत्रा छत्तीसगढ़ से जुड़े थे और अपनी पसंद की गीत सुने उन्होंने।
0: जी जी,
1: फिल्म का नाम था मुगले आजम, लता जी की आवाज। और इसी तारतम्य में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज 28 सितंबर का दिन
0: जी
1: महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती है और साथ ही महान गायिका स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न से सम्मानित दादा साहब फाल्के पुरस्कृत स्वर कोकिला स्वर सम्राज्ञी लता जी की भी जन्म जयंती है। इन दोनों महान विभूतियों को मैं सत सत नमन करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि लता जी का गाया हुआ एक भक्त गीत है

0: लता जी की आवाज में शहीद भगत सिंह साहब को याद कर रहा हूँ।
1: जी बिल्कुल, हम लेके चलते हैं आपको आपके पसंदीदा गाने की तरफ जो कि गाया लता मंगेशकर जी ने, और चलते हैं आइए लोग सुनते हैं आपकी पसंदीदा गीत की तरफ, ए मेरे वतन के लोगों।
0: जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हूं आप सभी का फिर से स्वागत है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। साथियों हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और कॉलर, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कैसे हैं रामपाल भाई साहब आप
1: जी? नमस्कार आदरणीय सम्मानित महोदय हर्ष भैया जी को मेरा प्यार भरा राम नमस्कार।
0: आपको भी मेरा प्यार बड़ा सादर भरा नमस्कार। कैसे हैं आप?
1: सर जी हम तो बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं। खेत पर तिली की कटाई चल रही है, साथ में रेडियो बुंदेलखंड का भरपूर मजा ले रहे हैं।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और भैया घर पर सभी लोग स्वस्थ हैं?
1: घर पर मम्मी पत्नी बच्चे सब कुशल मंगलमय हैं। और सर जी अधिकांश हमारा कॉल आदरणीय सम्मानित महोदय श्री शारदा प्रसाद जी के पीछे आगे लगता है।
0: जी जी जी जी जी। और मौसम कैसा है?

0: दोस्त आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। अभी हम सुन रहे थे गीत रोने ना दीजिए, कुमार सानू की आवाज में। जान तेरे नाम मूवी का ये गीत था, 1992 में ये पिक्चर आई थी। तो साथियों हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और साथी, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: सर जी।
0: नमस्कार राजकुमार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया हैं, आज बढ़िया मौसम, धूप खिली हुई है, अच्छी चिलचिलाटी हुई धूप खिली हुई है यहाँ पर।
1: हाँ सर जी, धूप तो खिली हुई है आज जी।
0: वहाँ पर भी मौसम ऐसा ही है?
1: हाँ सर जी,
0: वहाँ पर भी मौसम ऐसा ही है, धूप खिली हुई है अच्छी।
1: हाँ सर जी, यहाँ भी धूप निकला है और मौसम भी अच्छा है।
0: अच्छा, अभी बाकी के 2-3 दिनों काफी बारिश हुई होगी अच्छी सी, कैसा रहा मौसम, ठंडा हो गया था?
1: सर जी बारिश तो हुई
0: जी।
1: और सर जी आपके उधर क्या हाल है?
0: बढ़िया है, बस भगवान की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। आप श्रोताओं से आज जुड़े हुए हैं हम।
1: हाँ सर जी, अरे वर्षा दीदी का तो तबीयत खराब था ना, वो अच्छी हुई कि नहीं?
0: अभी अभी वह स्वस्थ हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से।
1: चलो अच्छा है सर जी, बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत अच्छी खबर सुना दीजिए कि अच्छी हो गई है।
0: जी जी, बहुत स्वस्थ हैं वो अभी। और कहाँ पर हैं आप अभी?
1: अरे हम सर जी तो यहाँ गुजरात में हैं।
0: अच्छा, गुजरात से सुन रहे हैं आज आप?
1: क्या करें सर जी, वहाँ झांसी में थे
0: जी,
1: तो वहाँ से फिर यहाँ चले आए।
0: अच्छा, क्यों, कुछ काम से गए हैं क्या आप, ऐसे ही घूमने?
1: नहीं, ऐसे ही चले आए हैं इधर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया, उम्मीद है भगवान से चाहेंगे आपका सफर अच्छा हो, खुशनुमा हो आपका सफर।
1: तो आप सर जी बस आपकी दुआ से सब अच्छा है।
0: जी जी, भगवान की दुआ से सब अच्छा है।
1: चलिए सर जी,
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे राजकुमार जी हम?
1: अब आप जो सुना दीजिए वही सुन लेंगे।
0: अच्छा, आज हमारी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ सर जी।
0: तो चलें श्रोताओं फिर आज गीत की ओर, हमारा पसंदीदा गीत सुनना चाहेंगे आज राजकुमार जी, तो चलते हैं गीत की तरफ। धन्यवाद राजकुमार जी।
1: धन्यवाद सर जी।

0: तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लीली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: साथियों एक बार फिर से वापस आ चुके हैं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से भैया, अपना परिचय दें।
1: अनूप कुमार, ग्राम उपरेखा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार।
0: नमस्कार अनूप कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, बैठे हैं नीम की छांव में।
0: हाँ, रेडियो का तो आनंद लिया जा रहा है।
1: हमने कहा भाई साहब से बात कर ली जाए आज।
0: बिल्कुल, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम, आपके कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और अकेले बैठे हैं क्या?
1: बैठे हैं।
0: अच्छा, अकेले हैं कि और कोई साथी बंधु भी हैं साथ में?
1: अकेले हैं, हार में थे।
0: अच्छा,
1: तो अकेले
0: तो अभी किस चीज की आप खेती वगैरह कर रहे होंगे, किस चीज की, क्या वो था?
1: चिली, अच्छा, चिली है, अरहर है। अच्छा, और भी है।
0: अच्छा अच्छा, तो कटाई वगैरह चल रही होगी अभी? तो
1: अभी नहीं, चिली की होने वाली है कटाई।
0: अच्छा अच्छा, तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: तू का तिल तेरा तिल का तिल।
0: जी जी जी, बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश का ये गाना जरूर बजाएंगे। और सब बढ़िया चल रहा है?
1: बढ़िया।
0: कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम?
1: बहुत गंदा, एक नंबर झकास।
0: आपको कब से जुड़े हुए हैं आप रेडियो बुंदेलखंड से सर?
1: बहुत दिन हो गए, 8-9 महीने हो गए।
0: अच्छा, तो आज आपको ये नई आवाज सुनकर कैसा लग रहा है? हेलो, हाँ मैं आपका नया आरजे हूँ ना, इसलिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: जी
1: अच्छा,
0: जी, आप हमें बताइएगा जरूर बाद में शो खत्म होने के बाद, आपको कार्यक्रम कैसा लगा, आवाज कैसी लगी मेरी। जी
1: हाँ,
0: तो हम आपके पसंदीदा गीत की तरफ चलते हैं, तू कातिल तेरा दिल कातिल।
1: दोस्तों के नाम ले लें सर?
0: जी जी बिल्कुल,
1: राजू कुमार यादव, बलवान चाचा और सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं और तुम्हारे साथ भी।
0: जी, राजू और बलवान चाचा, आप सभी का स्वागत है शो में। और हम चलते हैं आज की ये फरमाइश, तू कातिल तेरा दिल कातिल, तो बढ़ते हैं गाने की ओर। धन्यवाद अनूप कुमार जी।
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद।

0: जाए ना कातिल कातिल तू कातिल तेरा दिल।
1: साथियों वापस आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम, आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
2: जी, नमस्ते सर।
1: नमस्कार नमस्कार, कहां से भैया, अपना परिचय दें हमारे श्रोताओं को।
2: जी, संगीत की सुरलहरी की इस महफिल में कार्यक्रम हेलो फरमाइश के एक नए प्रोग्राम के साथ आदरणीय सर आपको सप्रेम नमस्कार करता हूँ। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: नमस्कार, धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, रेडियो बुंदेलखंड को सुनने के लिए। और भैया कैसे हैं संतोष कुमार जी आप?
2: मैं बहुत ही अच्छा हूँ सर, और मेरी वाणी से आपको पता चल रहा होगा बहुत ही मैं अच्छा हूँ, बेहतर हूँ। और आपकी प्रस्तुतियाँ जो होती है सर बेहद ही लोकप्रिय होती है, और आपकी करुण वाणी का प्रकोप इस समय पहुँच रहा है मध्य प्रदेश के समूचे प्रदेश में, क्योंकि रेडियो बुंदेलखंड ओरछा नई ऊर्जा नई तकनीक के साथ बेहतरीन ज्ञान का भी भंडार होता है, और आपकी मधुर वाणी बहुत ही लोकप्रिय भाषा में न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण पहुँच रहा है सर।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, हमारी वाणी को आप इतना पसंद कर रहे हैं। और भैया कहाँ पर हैं आप, अभी क्या कर रहे हैं आप?
2: मैं लेखन का काम कर रहा था सर, और लिखते लिखते ही मुझे याद आया कि रेडियो बुंदेलखंड पर आपका कार्यक्रम चल, बहुत ही प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश सभी श्रोता साथी कर रहे थे सर, तो मैं भी सोचा कि क्यों ना इस कार्यक्रम में भाग लिया जाए और कॉल लगाया जाए।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम आपका पसंदीदा गाना जरूर बजाएंगे, आप बताइए आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
2: जी सर बिल्कुल, एक क्लिक के माध्यम से ही आप हमारी फरमाइश के गाना हम तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं सभी को।
1: सभी की तरफ से धन्यवाद।
2: मूवी का नाम है सर हिना का, बहुत ही प्यारा सा गाना है, लता जी का गाया, अनारदाना नारदाना।
1: वाह क्या गाना चुना है आपने, हम आपका पसंदीदा गाना जरूर बजाएंगे, हम आपको जरूर सुनाएंगे, हमारे श्रोताओं भी सुनेंगे। और चलते हैं गीत की तरफ। संतोष कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेडियो बुंदेलखंड को सुनने के लिए। चलते हैं गीत की ओर।

0: साथियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के आखिरी कॉलर गुरविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर जी प्यार अते सत्कार परी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल गुरविंदर सिंह जी, आप कैसे हैं?
1: ठीक ठाक सर जी। गुरविंदर सिंह हमारे बेटे का नाम है जी। मैं जी पिंड मौड़कोट से डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से जगजीत मट्टू बोलता जी, उसका पिता बोलता हूँ सर जी।
0: जी जी जी जी, बहुत उमदा बहुत उमदा। और बताइए क्या चल रहा है गुरविंदर जी?
1: सर जी अपने जी पंजाब दे विच मौसम वधिया कूल हो गया, वधिया हो गई जी, अपने वधिया बारिश हो गई जी, तीन चार दिन हो गए, बहुत वधिया ठंडा ठंडा मौसम हो गया जी।
0: अच्छा अभी मौसम कैसा है वहाँ पे? अभी तो क्योंकि यहाँ पे अच्छी धूप खिली हुई है, बढ़िया मौसम सुहाना सुहाना सा हो गया है अभी, बाकी के कुछ बीते हुए दिनों में बारिश अच्छी हुई, ठंडक हो गई थी अच्छी, वहाँ पर कैसा है मौसम अभी?
1: हाँ जी ऐसी ही बारिश हुई है जी, थोड़ी पर इसकी पंजाब दे विच इतनी बारिश हुई जी, मेहनत मेहनत हुई है जी, पत्ते मौसम बढ़िया, सुबह शाम कूल कूल हो गया जी, पखे बंद हो गए जी,
0: कूल कूल हो गया है, सही बात है, ठंड लगने लगी अब तो रात में, पंखा कूलर वगैरह।
1: हाँ जी सब कुछ बंद हो गया जी।
0: हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही है, अभी तो मौसम अच्छा है, धूप अच्छी चलकती चलकती धूप निकली हुई है। और बताइए गुरविंदर सिंह जी कैसे हैं आप, कैसे क्या रेडियो आज सुन रहे हैं, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है?
1: क्या बात है सर जी, कार्यक्रम बात का पूछो मत जी, क्या बहुत अच्छे लगते हैं सर जी। पहले खुशखबरी एक बताता हूँ जी, आज जी आज उगे लोग है एक अपने भैन लता जी का और जी सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है जी, तुहानू मट्टू वाली मोहर लख लख वधाइयां देता हूँ
0: जी। आज आज भगत सिंह जी का 119वां जन्म दिवस है, तो आज उनके लिए भी हम कुछ करेंगे, उनके लिए भी अच्छी एक कार्यक्रम के बाद में एक स्पीच बोलेंगे हम, सुनिएगा जरूर। और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी साहब जी एक फिल्म है जी शोर, पुरानी फिल्म शोर जी
0: जी,
1: उसमें गुणगुणा कर बताऊ जी।
0: पानी दे पानी तेरा रंग कैसा
1: जी, जी।
0: मौसम के हिसाब से गाने सुनेंगे आज हम, क्यों गुरविंदर सिंह जी। चलिए तो श्रोताओं आज हम चलते हैं आज के आखिरी कॉलर गुरविंदर सिंह जी की फरमाइश पे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो बढ़ते हैं गीत की ओर। गुरविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सत श्री अकाल जी, क्या बात है।

साथियों, आज हमारे शहीद भगत सिंह जी का 119वां जन्म दिवस है। आज मैं यहाँ एक ऐसे महानायक के बारे में बात करने आया हूँ जिसके लिए देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं थी, बल्कि उसकी रगों में बहने वाला लहू। एक ऐसा नौजवान जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में उस वक्त मौत को गले लगा लिया जब लोग जिंदगी जीना शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं शहीद ए आजम भगत सिंह जी की। साथियों, जब हम 23 साल की उम्र में अपने करियर, अपनी नौकरियों और अपनी सहूलियतों के बारे में सोच रहे होते हैं, तब उस उम्र में एक लड़का देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमने को तैयार था। जब लाहौर जेल में उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कोई रोना धोना नहीं किया, कोई माफीनामा नहीं लिखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लेनिन जी की जीवनी पढ़ रहा हूँ, मुझे इसे कुछ पन्ने और पढ़ने हैं, बस पूरा हो जाएगा। यह थी उनकी वैचारिक ताकत। सोचिए कैसा रहा होगा वो मंजर जब 23 मार्च 1931 की उस काली रात को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े रहे थे। उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, आंखों में कोई आंसू नहीं था, उनके होंठों पर बस एक ही तराना था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के सम्मान है। तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और इस कार्यक्रम का समय यही होता है समाप्त। आपको कैसा लगा कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा, हमें कॉल या मैसेज कीजिएगा हमारे नंबर 9219207749 पर। मैं हूँ आपका आरजे हर्ष, लेता हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नई कहानी और एक नई मुस्कान के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी यादों को हमेशा संभाल कर रखिए, और सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो, अपनी बातें। और चलते हैं इस गीत की ओर।

0: धारा।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं। और कप्ताएं कार्यक्रम में अपन आज सुने कुमार विश्वास जी की लिखे भाई कप्तान को। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ देर ना करत भय सुनते हैं अपन एक कविता को जी कुमार विश्वास जी लिख रहे हैं कि उनकी खैरो खबर नहीं मिलती, उनकी खैरो खबर नहीं मिलती, हमको ही खासकर नहीं मिलती, शायरी को नजर नहीं मिलती, शायरी को नजर नहीं मिलती, मुझको तू ही अगर नहीं मिलती, रूह में दिल में जिस्म में दुनिया में ढूंढता हूँ मगर नहीं मिलती। लोग कहते हैं रूह बिकती है, मैं जहाँ रहता हूँ उधर नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सुजा देखो कितनी बढ़िया कविता लिखी है और ये कविता को लिख रहे थे कुमार विश्वास जी। सो दोस्तों, अपन ऐसी कविताएं आगे भी सुने और कप्तान को आनंद लें। दोस्तों, एक क्रम में कायना अपन एक बढ़िया से गीत को सुन लें और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो आ दोस्तों, सुनते ही बढ़िया से गीत को जी गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी।

बिल्कुल दोस्तों, राम नाम केबू करे धरे रहो मन धीर, ओ कारज वेई समार हैं सु कृपा संत रघुवीर। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवार जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में जो अपन कप्तान को सुन रहे थे सो कप्ता को सुनते हैं। जब कप्ता लिखी है कुमार विश्वास जी ने, सो दोस्तों आओ इनकी अब दूसरी कप्ता को अपन सुनते हैं। कुछ छोटे सपनों के बादले, कुछ छोटे सपनों के बदले, बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे। जाने कौन डगर ठहरेंगे, वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुद जवानी, हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने का जाने, हार जीत तय करती है वो, आज कौन से घर ठहरेगी, निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डहर ठहरेंगे। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होंठों में कैद तराने, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के लालच बहाने, जिनकी जिद के आगे सूरज मोरपंख से छाया मांगे, उनके भी दुर्मय, उनके भी दुर्मय इरादे वीणा के स्वर पर ठहरेंगे, निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो देखो कितनी बढ़िया जा कविता जो अपन ने सुनी है, एक कविता को लिखी है थी कुमार विश्वास जी ने। सो आओ दोस्तों अब कुमार विश्वास जी की ये कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं और वो कविता को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो अपने रेडियो माता दीन के संग में। अब देखो कुमार विश्वास जी का लिख रहे कि खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, हम पे एहसान कर रही हो ना, जिंदगी हसरतों की मैयत है, जिंदगी हसरतों की मैयत है, फिर भी अरमान कर रही हो ना, नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही है ना। जी हाँ दोस्तों, कि नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही हो ना, हमने समझा ये प्यार पर तुम तो जान पहचान कर रही हो ना। देखो कितनी बढ़िया कविता अजा भैया जी ने लिखी है कुमार विश्वास जी ने, और एक कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं। सो दोस्तों आप और ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। अब देखो भैया जी अपनी अगली कविता में का लिख रहे कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ, जब भी मुंह ढक लेता हूँ, तो देखो आगे का लिख रहे, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरे जुल्फों के छाव में, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। बहुत अच्छी बात, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। एक गीत पलकों पर लिखना, आहा, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होंठों पर लिखना, यानी सारी गीत हृदय की, यानी सारी गीत हृदय की मीठी सी चूठों पर लिखना, जैसे चुप जाता है कोई कांटा नंगे पांव में, ऐसे गीत उतर जाते हैं मेरे मन के गांव में। पलकें बंद हुई तो जैसे, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन्मंत सो गए हो, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन्मंत सो गए, पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए, जैसे धूप चुनरिया ओढ़ आ बैठी छांव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। तो देखो दोस्तों भैया जी कितनी बढ़िया कविता लिख रहे हैं और इन कविता को अपन सुनने हैं, और एक क्रम में उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के
संग में। तो देखो अब भैया जी आगे का लिख रहे कि जाने कौन नगर ठहरेंगे, जाने कौन नगर ठहरेंगे, कुछ छोटे सपनों की खातिर, कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे। जाने कौन नगर ठहरेंगे, वहीं प्यास के अनगढ़ मोती, वहीं धूप की सुर्ख कहानी। तो देखो भैया जी ने बहुत ही अच्छी ये कविताएं लिखी हैं और कप्तान के संगे संगे अपन कह रहे हैं कि माता दिन भैया आप केवल कप्तान की धुन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। तो दोस्तों आओ एक और कविता को सुनने के बाद फिर अपन मनोरंजन की ओर चलें और मनोरंजन में सुने अपन बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लें। तो देखो अब भैया जी कुमार विश्वास जी आगे का लिख रहे हैं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल ऐसा एक तारा है, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल एक ऐसा तारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। जो धरती से अंबर जोड़े, जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, जो शीशे से पत्थर तोड़े, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र मगर, बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। पनाहों में जो आया हो, पनाहों में जो आया हो तो उस पर बार क्या करना, पनाहों में जो आया हो तो उस पर बार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पर फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा

बिल्कुल दोस्तों, दुनिया में तू आकर भूला ईश्वर की डगरिया। देखो कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, ये गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया राजेंद्र सिंह जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम कप्तान में आप सब जन को जी कप्ताएं कैसी लगी। अब दोस्तों जो कप्ताएं कार्यक्रम आप सब जन ने सुनो है, ई कप्ता कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो रहा है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ई कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार। काव्य धारा।

0: आजीविका जाने सुने और अपनाएं।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है

0: दोस्तों, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी कहावतों से कहा जाता है कि हम जब किसी के पदचिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के क्या महत्व है। आज के साथ ही हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक हैं हमारे औद्योगिक विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव, अनुभव और उसका ज्ञान होना। आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं, उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रेसित होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं, तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं, वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाईज है, क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है।
0: बिल्कुल,
1: केवल उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए।
0: जी,
1: तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें, जिस चीज की आवश्यकता यहाँ पे है
0: जी,
1: किस चीज की उपलब्धता यहाँ पर है
0: जी,
1: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्रों में कर पाएंगे।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: उससे उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
0: जी जी जी
1: अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के विकास के लिए।
0: जी,
1: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजना है, शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करा।
0: जी जी सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते?
1: देखिए अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या इस बुंदेलखंड की बात की जाए, तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं हैं।
0: जी,
1: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं।
0: जी,
1: तो एक तो मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है।
0: जी,
1: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुवन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है।
0: जी जी,
1: ये सतर्क रहना है। तो फलस्वरूप एक उसके वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
0: जी जी,
1: पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो हम जूट के थैले, वुवन बैग, जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं।
0: जी,
1: इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ।
0: जी,
1: क्लायक ब्रिक्स हुआ।
0: जी जी जी,
1: सीमेंट उद्योग हुआ।
0: जी,
1: क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक तत्व, इनकी भरपूर उपलब्धता है, तो सीमेंट और टेबल क्लॉथ वगैरह की काफी संभावनाएं इस क्षेत्र में है।
2: जी। और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वो ही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है, या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं

0: चाहते हैं वो एक आवेदन आरसीटी की कमर में कर सकते हैं, तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उन्हें सूचना देके उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है जिसके दिन अलग अलग रहते हैं, तो जो भी युवा इच्छुक है उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया कराते।
1: सर कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
0: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है
1: जी,
0: 20 दिन का रहता है, किसी का एक महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है, तो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है
1: जी
0: कि आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी।
1: सर प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या बैंकों में उसकी जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है, वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया गया है
1: जी।
0: तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है
1: जी। अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजना संचालित की जा रही है?
0: जी वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजना संचालित की जा रही है रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है
1: जी,
0: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
1: जी,
0: युवा उद्यमी योजना
1: जी,
0: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है
1: जी।
0: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो उसमें 50,000 से लेके 10,00,000 तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है
1: जी जी जी।
0: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10,00,000 से लेके 2 करोड़ तक की योजना है, इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है
1: जी जी,
0: व्यवसाय शामिल नहीं है
1: जी।
0: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेके 2 करोड़ तक है, इसमें सेवा व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, केंद्र सरकार की सर कौन सी योजना है?
0: केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
1: सृजन कार्यक्रम
0: ये योजना 50,000 से लेकर 25,00,000 तक है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों की कई स्थापना की जा सकती है, इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
1: चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसलिए धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अपना रेडियो अपनी बातें एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में, और साथियों हमारे हितेश धाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए, ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो, ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है, पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होना चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको यदि आप उद्यम डालते हैं तो। आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने

जाती हैं, तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, सब तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए। खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम विमल जी के पास ले चलते हैं, और विमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हरप्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं, या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे जिससे कि हम कर सकें। तो उसका ये कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाए जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है। अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या 2-3 महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
1: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन

रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों, अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना, समझा, और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए, तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उपनिरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पल्ले पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं, तो दूसरे पल्ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पर्णों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हो। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछेगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जोड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। दोस्तों, हमारा नंबर है 9219207749। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड है 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए हम तमाम प्रकार की रोजगार सूचनाएं हो या उनके कैरियर संबंधी जानकारी हो, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोता साथियों तक पहुंचाते रहते हैं। आज चूंकि आज एक बहुत बड़ा विशेष दिन है और आज के हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, चूंकि हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी में यथासंभव स्वतंत्र

रूप से काम करने की क्षमता को महत्व देता है। मरीज और फिटनेस के शौकीन आमतौर पर चोट, बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारण होने वाली गति संबंधी विकारों से जुड़ी शारीरिक अक्षमताओं के लिए फिजियोथेरेपी सेवाओं की तलाश करते हैं, जो उनके लिए जरूरी या महत्वपूर्ण किसी भी गतिविधि को करने या करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। स्वास्थ्य सेवा द्वारा अपनाई जाने वाली अनेक प्रतिक्रियाओं में से चिकित्सीय व्यायाम एक प्रमुख तत्व के रूप में अपना स्थान रखता है, जो किसी व्यक्ति के कार्य को सुधारने या बहाल करने या शिथिलता को रोकने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को केंद्र में होता है, जैसे कि संतुलन में सुधार, समन्वय विकसित करना, प्रगतिशील लचीलापन, गतिशीलता में सुधार, मांसपेशियों का प्रदर्शन और तमाम प्रकार की, चूंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, वो डॉक्टर ही बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें मिल गए हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी। आज आप किसी परिचय के मोहताज, नाम आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, हमारे मित्र हैं मनोज द्विवेदी जी। आप चिरंजीव हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे मरीजों को उन्होंने सही भी किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी रहते हैं। तो खास बातचीत में आप सुनिएगा कितनी महत्वपूर्ण रहता है ये फिजियोथेरेपी हमारे स्वास्थ्य के लिए। चलिए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं।

0: सबसे पहले मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को। मुझे बड़ी खुशी है रेडियो बुंदेलखंड के मंच पर आने पर, और चूंकि ये चैनल मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता और जानकारी भी प्रदान करता है, तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि चूंकि विश्व थेरेपी दिवस, चूंकि एक अलग लोगों को समझ में भी नहीं आता, खासतौर पर अगर ग्रामीण परिवेश में अगर देखा जाए, जोड़ा जाए इसको, तो इसकी शुरुआत इतिहास किस तरीके का रहा है, थोड़ा हमारे साथ बताइएगा।
1: देखिए, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप से शुरू हुई
0: जी।
1: और जैसे कि वर्ल्ड वार टू, और इस दौरान बहुत सारी कैजुअल्टी और बहुत सारी इंजरीज हुई, तो उस दौरान विकलांगता या जो इंजरीज के दौरान चलने उठने बैठने में असमर्थता आई, तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल या भूमिका अहम होती चली गई, वहां से ये विकसित होता चला गया। दूसरी बात कि भारत में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इसका समावेश होता चला गया, और आज ये किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अहम भूमिका प्रदान कर रही है
0: जी। मतलब जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि जो फिजियोथेरेपी, और खासतौर पर आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आप इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके की मरीज यहाँ को देखने को मिला है आपको, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, और खासतौर पर ये इलाज किस तरीके से लोगों को एक रामबाण साबित होता दिखाई दे रहा है।
1: देखिए, मैं करीब करीब बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 साल से फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रहा हूँ। खासकर अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई बहन अपने खेतों में काम करते समय या अपने गांव देहात में मजदूरी करते समय बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। जैसे खेतों में काम करते समय कमर की तकलीफ होना, या लंबे समय तक झुके रहने की वजह से गर्दन में समस्या होना, या बुवाई के समय खासकर जो है किसान भाई जो है हमारे, तो उनको घुटनों में दर्द होना, तो इस तरह की समस्याएं लेकर जब हमारे पास आते हैं, तो उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनका फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है।
0: सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे हमारे साथी, फिजियोथेरेपी और नॉर्मल जो इलाज कराते हैं, क्या अंतर दिखाई देता है और क्या लोगों को समस्याएं आती हैं?
1: देखिए, आज के समय में बहुत सारे जो हमारे जागरूक भाई बहन हैं, तो उनका ये मानना रहता है कि अगर बिना दवाई

0: बिना जो है ऑपरेशन के, क्या कोई ऐसी पद्धति या चिकित्सा विधि है जिसके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी परेशानियां, जैसे कि मांसपेशियों का दर्द हो गया, या जोड़ों का दर्द हो गया, या नसों का दर्द हो गया, या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि लकवा हो जाना या किसी अंग का काम नहीं करना, तो ऐसी समस्याओं में भी हम एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या व्यायाम या कुछ मशीनों के योगदान या सिकाई से भी उसमें लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये पद्धति चिकित्सा क्षेत्र की ही है। तो कई बार बीमारियों में मेडिसिन के साथ साथ या दवाइयों के साथ साथ भी फिजियोथेरेपी का योगदान रहता है।
1: जी, खास तौर पर सर देखा जाता है, अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो देखा जाता है कि लोग अगर कुछ भी समस्या आती है, खास तौर पर अगर उनको पैरों में दर्द हुआ या फिर चेस्ट पेन हुआ, इस तरीके की अगर कोई भी समस्या आती है, पेन किलर जो रहती है, दर्द निवारक गोलियां जो रहती हैं, खास तौर पर वो खा के उसका निदान कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, इससे लोगों के शरीर में जो नुकसान दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर आज जो विकट समस्याएं सुनने को और देखने को मिल रही है, कैंसर जैसी समस्याएं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयां और रोज रोज दवाइयां खाने से हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान होता है, क्या कहना चाहेंगे?
0: मनीष जी, ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल उठाया है, और इसका मुझे लगता है कि हमारे हर भाई बहन को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, हर छोटी समस्या के लिए तुरंत पेन किलर ले लेना या दर्द निवारक दवाई का सेवन करना उचित नहीं है, जब तक कि वो बहुत ज्यादा विकट समस्या का रूप ना ले ले। मैं कहूंगा कि छोटे या छोटे मोटे शारीरिक कष्ट के लिए आपको दर्द निवारक दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो आपको डॉक्टर की उचित सलाह के बाद लेना चाहिए। रही बात छोटे दर्द वगैरह के लिए या छोटी मोटी दिनचर्या में जो आप कष्ट लेते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए छोटे मोटे व्यायाम, अपनी दिनचर्या में बदलाव और सही पोषण के माध्यम से आप उसको ठीक किया जा सकता है।
1: जी, लेकिन यहाँ पर तो समस्या यही आती है कि लोगों को, चूंकि ऐसा माना जाता है, चूंकि मैं जाना स्पेशलिस्ट नहीं हूँ उस चीज में, लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से और जो हम लोग नॉर्मल दवाइयां लेते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, फिजियोथेरेपी कराने में थोड़ा समय लगता है, जो कष्ट रहता है उनको, जो दर्द रहता है वो फिजियोथेरेपी से क्या धीरे धीरे जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। आपका क्या मानना है कि ये क्या चीज बताते हैं?
0: देखिए, मैं कहूंगा कि फिजियोथेरेपी भी लाभ देती है और दवाइयां या और जो पद्धति है वो भी लाभ देती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि जैसे आर्थराइटिस है या गठिया हम कहते हैं, तो गठिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सूजन बढ़ रही है या किसी जोड़ के बीच में इन्फ्लामेशन या संक्रमण फैल रहा है, तो उसमें योगदान रहेगा मेडिसिन का या दवाइयों का जो उस संक्रमण को रोकने का काम करेगी। लेकिन अगर उस जोड़ में संक्रमण के साथ साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो रही हैं या स्नायु टाइट जकड़ रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का योगदान लिया सकता है और उस संक्रमण को कम करने के लिए दवाइयों का योगदान लिया सकता है। तो दोनों का ही सम्मिलित रूप मरीज को और बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है।
1: ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ देर बाद आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा, ऐसा लोग कहते हैं, आपका क्या
0: ये
1: मानना?
0: बिल्कुल सही कहना है मनीष जी आपका।
1: जी
0: है क्या कि फिजियोथेरेपी जब हम प्रारंभ करते हैं किसी समस्या को लेकर के, तो हमें उन मांसपेशियों को या उस जोड़ को पूरी तरह से ठीक करने में या सामान्य लाने में एक समय लगता है। हो सकता है कि यह समय कुछ दिनों से लेकर के महीनों तक में लग जाए, क्योंकि जितनी पुरानी समस्या होगी उसको ठीक होने में भी उतना समय लगेगा,
1: जी
0: जितनी गंभीर समस्या होगी उसके उपचार में भी उतना ज्यादा समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी थोड़ा सा टाइम ले सकती है पूरी तरह से ठीक होने में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर पर जब हम समुदाय के पास जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या देखने को और सुनने को मिल रही है कि खासतौर पर महिलाओं और पुरुषों के घुटनों में ये दर्द होता है, क्या मानना ही किस कारण से होता है, क्या खान पीन से होता है, खान पान से होता है, क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे होता है, क्या लगता है?

0: किस तरीके से आजकल ये जो समस्याएं देखने को मिलती और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती चली जा रही है, इस इलाज इसको फिजियोथेरेपी में किस तरीके से कर सकते हैं?
1: मनीष जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि हम युवा अवस्था में हैं
0: जी,
1: तो उस दौरान बहुत सारे जो है खेल कूद के दौरान या हमारे कुछ क्रियाकलाप के दौरान चोटें लग जाती हैं
0: जी।
1: उन चोटों की वजह से हो सकता है उस युवा अवस्था में, चूंकि हम अभी यंग हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं, हमारे जोड़ मजबूत हैं, तो ये समस्याएं हो सकता है उस समय या उस अवस्था में कम महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो जो पुरानी चोटें हैं ये उभर के आने लगती हैं या हमारे जोड़ को बहुत जल्दी जो है संक्रमित करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अगर हमारा खान पीन अच्छा नहीं है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो बहुत हमारी फिजिकल एक्टिविटी या हमारे शारीरिक व्यायाम से संबंधित कह लीजिए वो कम है, तो हमारी मांसपेशियां कमजोर रहेंगी जो उम्र के साथ हमारे जोड़ों को प्रभावित करेंगे। दूसरा, अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गठिया हो गया, डायबिटीज हो गया या और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो भी इन जोड़ों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। अगला कारण ये हो गया कि अगर हमारी जलवायु में, खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि अब बहुत ज्यादा क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है या सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वह भी हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है जिनसे ये समस्याएं होना शुरू हो जाती है।
0: इसका निदान किस तरीके, क्योंकि फिजियोथेरेपी आप काफी सालों से इस पर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल की हैं और खासतौर पर आपने एक फोकस तरीके से इसको चीज को बिल्कुल बारीकी से लिया है। ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल के लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं खासतौर पर इस फिजियोथेरेपी को लेकर?
1: देखिए, अगर आपको कुछ भी मांसपेशी संबंधित या जोड़ों से संबंधित समस्या होती है तो हमारा ये मानना रहता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है उस तकलीफ में, फिर हम काम में लग जाते हैं। तो मैं कहूंगा ये पद्धति ना अपनाएं। अगर आपको समस्या लंबे समय से है या वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो मैं कहूंगा कि अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें और उनका मार्गदर्शन लेकर के उन चीजों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, जिससे आप समस्या से बच सकते हैं और समस्या से निदान भी पा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात की है। और साथियों, हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है और खास तौर पर यह आज हम जो बीमारियां सुनने की और देखने को मिल रही हैं, बहुत चिंताजनक बात है। हमें इसको समझना होगा, खासतौर पर ग्रामीण अंचल में इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है कि हमें कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी के ओर रुक करना होगा और यही इलाज है, क्योंकि आजकल ये जो बीमारियां सुनने को मिल रही हैं उसका सिर्फ एक ही इलाज है। किस तरीके से हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इसका निदान पा सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले चरण में फिर से मिलेंगे, अगले भाग में जरूर मिलेंगे। कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं इस पर हम जरूर बात करेंगे। बने रहिए आपके दोस्त मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 FM।
1: नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और ये विशेष कार्यक्रम है आज, चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, बड़े धूमधाम से, चूंकि डॉक्टरी लाइन में से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अपना एक महत्व भी रहता है। और खास बातचीत हमारे डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी से आपने सुनी है, कितनी महत्वपूर्ण रहती है। और मतलब ये कहेंगे कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर तमाम प्रकार के एक्सरसाइज के माध्यम से और बहुत सारी आधुनिक मशीनों द्वारा यहाँ पर तमाम प्रकार के लोगों को, मांसपेशियों में जिनको खिंचाव है या पर किसी को लकवा मार गया है, तो एक एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरीके से वो लोगों को राहत दे रहे हैं, बड़ा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी को, जिन्होंने ये प्रयास किया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक वरदान साबित हो रहा है चिरंजीव स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, जो कि हॉस्पिटल में है। डॉक्टर मनोज द्विवेदी, तो खास बातचीत आपने सुनी है, और भी हम तमाम प्रकार की बातचीत हम लेकर आएंगे। तो कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बता सकते हैं।

इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92 19 20 77 49, या फिर हमारे इस पते पर आप चिट्ठियां भी लिख सकते हैं, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा, और आपके रेडियो साथी मरीज लेते हैं जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। इस कार्यक्रम को साथियों हम बहुत दिन से चलाओ चले आ रहे हैंगे और कोशिश कर रहे हैंगे कि हमारे श्रोता साथी सबसे पहले जब ग्राम विकास की बात आतेगी तो ग्राम विकास में सबसे ज्यादा सरपंचन को अहम भूमिका रहेगी, आपको भी पता है और सब साथियों को हमारे पतो भी है गो। और तो और साथियों अभी से अपन को ग्राम पंचायत जब से गठित हो गई हैगी अपन को का करने हैंगे सरपंचन के संगे मिलके अपने ग्राम विकास को खाका तैयार करने है गो। संगे संगे जो नियमावली हैगी वह नियमावली के अनुसार अपन को काम करने हैं। सबसे पहले एजेंडा तैयार करने कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन से ऐसे काम रह गए हैंगे जो पंचायत करा थेंगे और जिनकी मूलभूत आवश्यकता हैगी। तो सबसे पहले अपन हो जैसे बरसात को मौसम चल रहा है गो, बरसात के मौसम में सबसे पहले जब बैठक हुई हैगी तो बैठक में अहम चर्चा अपन हो का करने हैं गो के सबसे पहले अपन हो एजेंडा तैयार करने खेती किसानी को के खेती किसानी में हमारे किसान साथी कैसे काम कर सकते हैं, पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैंगे, बरसात के पानी को कैसे रोक सकते हैंगे, मेड़ बंधन कौन तरीके से करा सकते हैंगे, तालाब गहरीकरण कौन तरीके से हो सकते है गो। संगे संगे अपने पेयजल की का व्यवस्था है, सड़क की का व्यवस्था हैगी, शिक्षा की का व्यवस्था हैगी, रोजगार में जब अपन रोजगार की बात करते हैंगे तो ग्राम पंचायत में मनरेगा में बहुत सारा काम आते है गो, तो बाकी का व्यवस्था है। तो ये सारे चीजें अपन को लिख के वैसे तैयार करके रखने आगामी ग्राम सभा जब भी हुई है तभी अपन को ये एजेंडा जो आपने तैयार करो ये रूपरेखा आपने जो तैयार करी ग्राम पंचायत में लेके जाने हैंगे और सरपंचन के संगे जो बैठक होते हैगी ग्राम सभा की बैठकें होते हैंगी उनको जाके अपन को बताना है कि जे जे मूलभूत आवश्यकता है आप अपन को ग्राम विकास पे अपन को काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हैगी। तो ये मूलभूत चीजें हैं जो अपन को सोचने हैं समझने हैगी। दूसरी बात आते हैगी कि स्वयं सहायता समूह हर ग्राम पंचायत में बन रहेंगे। तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की काब भूमिका रहता है ग्राम पंचायतों में वह विषय पर आज अपन बतकाव कर बे बारे हैंगे। छोटी छोटी बातें अपन ध्यान में रखे हैं कि कैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता रहता है खासतौर पर स्वयं सहायता समूह जो काम करते हैंगे मिलके जब काम करते हैंगे तो बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आते हैं। तो वो विषय पर अपन बतकाव कर भी जा रहे हैं लेकिन अपनी बातचीत काफी हो चुकी है तो अपन का ना अपन इतने 900 लोग गीत को सुन लेते हैंगे और गीत के बाद अपन आज हम जाने कि ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की भूमिका, खासतौर पर ग्राम पंचायतों में भूमिका स्वयं सहायता समूह की, स्वयं सहायता समूह की का भूमिका रहेगी जहाँ पे भी एक प्रकाश डाले हैंगे का पात्रता ग्रामीण युवक और जो गरीब हैंगे उनको का सहयोग मिलना चाहिए, विशेष समूह जो बनाते हैं कैसे बनाते हैंगे, घटक कार मापदंड कर रहे थे उन विषय पर अपन चर्चा करेंगे लेकिन जैसे पहले अपन सुनाते हैं जो 900 गीत को बने रहो आपके आरजे मनीष के साथ सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बात है।

अपना रेडियो अपनी बातें। अभी आप सुन रहे थे उत्तम सिंह यादव और उनके साथियों के आवाज में एक प्यारे से गीत को। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ात भाई अपन जानत हैं कि ग्राम पंचायत में खास तौर पर स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका रत हैगी, बाबे साहब पर अपन बातचीत कर रहे हैं। आपको पता हो चाहिए कि आजीविका कौशल के सफल क्रियान्वयन में विशेष कर अपने अधिकार के क्षेत्र में अत्यंत निर्धन परिवार को लाभ पहुंचाने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रत हैगी। चूंकि आजीविका कौशल में कौशल विकास के लाने ग्रामीण सेचुरेशन अप्रोच अपनाई गई, जाकी लाने कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने, जानकारी प्रदान करने के प्रयासों में मदद करने, कौशल विकास की मांग और नियोजन के लिए डाटाबेस तैयार करने, जॉब मेला के आयोजन में मदद करने तथा क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर PRA की सहायता करने में ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभात है। ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि महिलाएं अधिक अत्यंत कमजोर वर्ग कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल हैं, उन्हें संभावित उम्मीदवारों और संभावित उम्मीदवारों के अभिभावकों के साथ एक विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करना होगा और कार्यक्रम की संभावनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। जब PIA कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है तब ग्राम पंचायतें विभिन्न MIS रिपोर्ट प्राप्त करके तथा प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवार के साथ सीधी बातचीत करके क्रियान्वयन पर नजर रख सकती है। ग्राम पंचायतों का क्रियान्वयन संबंधित मुद्दे जिला और राज्य मिशन के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ग्राम पंचायतें प्रशिक्षण के पश्चात उम्मीदवारों के लिए को दिए गए काम पर नजर रख सकती है। काम के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत कर सकती है। शिकायत निवारण के हिस्से के रूप में कार्य कर सकती है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका जो रहती है वो आजीविका कौशल में कौशल विकास के माध्यम से निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है इसमें, और निर्धनों की संस्थाओं की क्षमताओं का इस्तेमाल करके नियोजन का लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। निर्धनों की संस्था HSG यानी स्वयं सहायता समूह, उनके संघ और तथा आजीविका क्रियाकलाप निर्धनों को स्वयं सहायता पर आधारित सामूहिक क्रियाकलापों तथा पारस्परिक सहयोग के लिए मंच मुहैया कराती है। लक्ष्य में रखे हुए लाभार्थियों को एकजुट करने, कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने, लाभार्थियों को निर्धारण में सहायता करने का निर्धारित युवकों के अभिभावकों हेतु काउंसलिंग सत्रों का आयोजन में मदद करने, PIA द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी करने आदि सहित विभिन्न क्रियाकलापों में इन संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार PIA को अपनी परियोजना का क्रियान्वयन की कार्य नीति तैयार करने में SSG यानी स्वयं सहायता समूह की भूमिका को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यानी जरूरत है। अब बात आती है पात्रता। ग्रामीण युवक जो गरीब हैं, 18 से 35 वर्ष की आयु के निर्धन ग्रामीण युवक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह हैं। विकलांग व्यक्तियों तथा विशेषकर अपेक्षित जनजाति समूह यानी PTG के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष इसमें रखी गई है। विशेष समूह जिनमें विकलांग व्यक्ति, अवैध व्यापार में पीड़ित व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, पुनर्वास किए गए बंधुआ जो मजदूर है को 16 वर्ष से अधिक की आयु में भी नामांकन की अनुमति दी जा सकती है, वशर्ते कि वे जॉब

प्रशिक्षण सहित अन्य प्रशिक्षण का कार्य पूरा होने तक 18 वर्ष के हो जाए। निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण नामक प्रक्रिया के जरिए निर्धनों का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया NRLM कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा PIP के लिए अधिसूचित किए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा। इस संभावना व्यक्त की जाएगी कि PIP से लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्ष्यबद्ध करने में मदद इसमें मिलेगी। जब तक PIP के उपयोग से निर्धनों का निर्धारण किया जाता है, तब तक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह के निर्धारण में BPL परिवारों की मौजूदा सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। उपयुक्त के अलावा ऐसे युवक जो विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मनरेगा कार्यस्थलों पर काम से कम से कम 35 दिनों तक श्रमिक के रूप में कार्य कर चुके हैं, BPL सूची में ना होने के बावजूद इसके लिए पात्र होंगे। ऐसी आशा जताई गई है कि PIP के दौरान उनका निर्धारण कर लिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर विशेष बल, राष्ट्रीय स्तर पर 50% निधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की जाएगी। इनके बीच निधियों के अनुपात का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इसके अलावा 15% निधियां जो अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए अलग से रखी जाएगी। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी अल्पसंख्यक समूहों में से हो। कवर किए गए व्यक्तियों में से 1/3 लाभार्थी महिला होनी चाहिए। यह निर्धारण केवल न्यूनतम है। यद्यपि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों में से किसी भी श्रेणी में कोई पात्र लाभार्थी नहीं है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसे प्रमाणित कर देती है, तब उनके लक्ष्यों को अन्य श्रेणी के लक्ष्यों में बदला जा सकता है। विकलांगों व्यक्तियों के मामले में अलग से परियोजना प्रस्तुत की जाएगी। इस परियोजना के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे। इनकी इकाई लागत इन दिशा निर्देशों में उल्लेखनीय इकाई लागतों में से अलग होगी। विशेष समूह जो होते हैं उसकी भी एक गाइडलाइन तैयार है। यद्यपि विकलांग व्यक्तियों की अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों, किन्नरों, पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों जैसे विशेष समूह तथा अन्य कमजोर समूहों के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी राज्यों को ऐसे विशेष समूह जो अक्सर छूट जाते हैं तो ऐसे को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यनीति बनानी पड़ती है। इन समूहों की चुनौतियों से निपटने तथा भागीदारी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य के स्वरूप को राज्यों द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में समाविष्ट किए जाने की जरूरत है। मूक बधिर, चलने में अक्षम, दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में संभावित नियोजकताओं को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें काम पर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों की नियोजन पर जुड़े प्रशिक्षण संबंधित नोट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर वेबसाइट है, वहाँ पर उपलब्ध है नोट पूरे। http://nrlmskill.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर घटक और मापदंड की बात करें तो आजीविका कौशल क्रियाकलापों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप और दूसरा है PIA द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप। अब आता है SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, उनके लागत मापदंड। इस खंड में SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची, उनके लिए लागत मापदंड के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह राज्य नोडल एजेंसी पर भी लागू होगा जिन्हें राज्य आजीविका कौशल क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है। कौशल में कमी

आकलन एसजीए का उद्देश्य कौशल और नियोजन के लिए ग्राम पंचायत बार मांग का पता लगाना, नियोजन हेतु विभिन्न कौशल श्रेणी में प्रतिभावना उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। हालांकि 10 वर्षों में किए जाने वाली जनगणना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कराए गए अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े प्रारंभिक बिंदुओं हो सकते हैं, फिर भी एसआरएलएम को खुद या पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत वार विस्तार आंकलन कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप इससे जुड़िएगा और आपको लगता है कि एसआरएलएम या एनआरएलएम जो मध्य प्रदेश में चलता है उनसे जुड़कर विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। साथियों, हमें आशा है कि इसका दूसरा भाग हम अगले कार्यक्रम में जरूर आपके पास लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। चूंकि हमारे चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं तो ऐसे में कुछ समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किस तरीके से आपका नया सरपंच किस तरीके से काम करने में सक्षम है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसे इस पर गौर फरमाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

कहने लगे कि अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, क्योंकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है, उस पर भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी, हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती डूबी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे, चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को, लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम

0: आधारित जानकारी देते हैं, किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है, लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से दो गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70-80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं, तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौधे तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम एक या दो दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी जी जी, और रोपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रोपाई, चूंकि एक विधि रहती है रोपाई की, तो कौन सी ऐसी विधि है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हैं हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60 बाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए?
1: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीज़न में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा रखती है, और चूँकि हमारे जो किसान भाई हैं ना उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूम में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूम में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
1: जी सर बिल्कुल, अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर मिर्ची भट्टे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांट हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
0: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूँकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियाँ, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियाँ, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों?
1: बिल्कुल सर, अभी क्या है जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज़्यादा होने की वजह से सब्जियाँ की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम पेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है, तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पर कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनको जैप या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूँकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी, और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
0: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाई भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
1: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं, जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी। ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूँकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
0: जी जी जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
1: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र विहार का पता है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक गायक कलाकार से भी बात करते हैं और कछु विधा के अनुसार अपन गीतन को भी सुनते हैं। तो दोस्तों, ई में अपन आज पहला तो मिले भैया बाबूलाल कुशवाहा जी से और उनसे जाने के उनने गाबो बजाबो कैसे सीखो है, काका विधान जी गाउत हैं। और दोस्तों, एक के संगे संगे देखो अपने जो भारतीय परंपरा में नवदुर्गन को त्यौहार मानो जाते, वो त्यौहार भी अपनो आ रहा है, बिल्कुल नियर है, आगो है। तो दोस्तों, अपन को त्यौहार में भी गाउत बजाउत हैं, तो ऊ त्यौहार में जो देवी गीत अपन गाउत हैं वह देवी विधा को आउत है, तो ऊ देवी विधा के गीत भी अपन आज ही कार्यक्रम में सुने और भैया बाबूलाल से भी उनकी जुबानी को सुने। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। लेकिन दोस्तों, बाबूलाल जी से मिलवे से पहले अपन सुनत हैं एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद आप और लो और हम सो लें। तो दोस्तों, आप सुनत हैं सबसे पहला तो एक गीत को और गीत को आनंद लेते हैं।

चार नारी उसी विसाखो घट घट पी गए गरग पेट में भारी तुम्हारी हिम्मत को बलकारी भोले बाबा ले।

0: लारी
1: बारे प्यारे
0: मांगे काली क्या करे में डारे ढूंढा बैल सवारी तुरी महिमा बड़ी निराली।

राजा लगा दे तारी निरगुण सरगुण निराकार में नाम तुम्हारो भारी। भगवान दास कहे।

0: बिल्कुल दोस्तों, मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो दोस्तों, कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है और गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों, ये गीत को गा रहे थे भैया बाबूलाल कुशवाहा जी। तो साथियों, बाबूलाल कुशवाहा जी के गीत के बाद अब बाबूलाल जी से बात भी करते हैं कि भाई कैसे गावो बजावो इनने सीखो है और कैसे कैसे इनने काका गाओ है। तो दोस्तों, बाबूलाल कुशवाहा जी से आओ अपन मिलते हैं ये छोटे से संदेश के बाद। अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम बताओ।
1: बाबूलाल कुशवाहा।
0: बाबूलाल कुशवाहा कहाँ से हैं अपन?
1: बासवान
0: चताव से बाबूलाल जी। अच्छा बाबूलाल जी, आप जा बताओ कि आपने जो गावो कहाँ से सीखो? तो
1: हमने हमारे बूढ़े पुराने हैं थे
0: पहले
1: के, तो होता थे पहले से,
0: पहले से भजन जी होता थे आपके थे। अच्छा, तो आप लोगों ने इसे सीख लो जो अशोक
1: पहले बैठा था डाटा दूर दूर।
0: हाँ दूर दूर
1: कई बस सुना हो पाए नहीं।
0: हाँ,
1: फिर उन्होंने कही कहा तो मैं सीखने हमने। हाँ
0: हाँ,
1: तो उन्होंने फिर बजवाओ गवाओ।
0: अच्छा, तो आपको जो पता है कि आप जब कितने साल की हुई हो जो आपने सीखो है? जो
1: हुई हम 15-16 साल की।
0: 15-16 साल की। तो आपको अच्छी ले हती मतलब गावे की
1: ले हती?
0: तो जैसे आपने 15-16 साल के हते हो और आप जैसे जो होते भजन वजन, तो आप उनके करके उनके बैठन लगाते
1: हो,
0: तो जो भजन का डेली होते क्या कम गुम होते ऐसे?
1: पहले तो जैसे ब्याह माई करें आदमी ने बैठ गए सब रोई होते पहले तो।
0: अच्छा,
1: अगर रिश्तेदार आ गए तो कही आज वहाँ होने होने है।
0: अच्छा,
1: सुबह अच्छी ले लगी।
0: हाँ, फिर तुम्हें ले बढ़त गई। फिर तुमने सबसे पहला कहा गाओ तो कछु ऐसी आप याद हो बे बादन की जब आपने सबसे पहला शुरुआत करी थी गावे की तो का चीज गाई?
1: हमने गाओ कछु नहीं।
0: हाँ,
1: वो तो जैसे आपने गाओ।
0: हाँ, सो हमने उठो संगे लो वाला।
1: आपने कहे हम तुमको बोला।
0: हाँ,
1: ऐसे ऐसे सीख गए।
0: अच्छा, मतलब गावे वाले ने उठा दो फिर आप तुम साइड में बोलो।
1: हाँ, पहले शेर पर सीखो एक दूसरे से।
0: हाँ,
1: फिर उन्होंने सको के जाप गाने तो नहीं आओ।
0: हाँ,
1: सुनने के सुनाओ।
0: हाँ,
1: फिर ऐसे ऐसे गाओ।
0: अब सीख गए?
1: सीख गया सब। चाहे थे पार्टियों में चले जा।
0: अच्छा, अच्छी बात है। देखो तो आपको कितनी जब लगन से हो सब।
1: हो लगन से
0: है के जब जिया जी आदमी
1: हमें देख लगन है कि ब्याह है पे हम एक साल घई नहीं रहे।
0: अच्छा, मतलब ब्याह आपको होगा तो?
1: हाँ, वो घर नहीं आए एक साल। हम
0: एक साल आप घर नहीं आए तो कहाँ गए थे आप?
1: जो सिखाओ तो उनके संग रहा तो ले जाए।
0: अच्छा, आपको घर से कोई मतलब नहीं ले बताओ। लेकिन अब आजकल के लड़का नहीं है ऐसे बेकच्चा, हमें कोई सिखाया चाहना हमें कछु नहीं सीख रहा हमें तो घर है।

0: वो नहीं कहते रोटी खाई हमने।
1: अच्छा
0: वो तो ही रहे।
1: अच्छा को का उत्तो आप कहते जो ऐसे हते हमारे संग सीखते
0: चार से हते परिवार के।
1: हाँ
0: तेरा लाल कुशवाहा गुजर गए थे।
1: अच्छा
0: हाँ गुरु भी हती तो
1: बे गाँव था ते सारंगी बजाते
0: हो सारंगी
1: तो बे गाँव तो सारंगी बजाते तुम तो फिर उन्हीं के संग लग गए
0: बस
1: घर से कोई मतलब नहीं। अच्छा शादी क्या साल की हते जब आपकी हो गई थी
0: शादी हुई

0: अपनो साजबाज बूढ़े पान वाले रखे हैं अपना।
1: अच्छा तो इस साजबाज में काका हो काका है बजावे वाओ?
0: इसमें सारंगी है, खंजड़ी है, जे झाने हैं,
1: अच्छा
0: झीका है,
1: झीका है, जे चीजें बजाते हैं आपके। तो आप देखो भाई जो पुराने चलन के ये बाजे हैं जे अबे भी आप संभाल के रखे हैं अच्छी तरीका से।
0: अगर फूट जाए तो हम उन्हें मर भी ले
1: मरवा की जरूरत नहीं है। और को मर पाओते ना क्या? नहीं जैसे खुद ही मर नहीं आती तो
0: नहीं, हम खुद ही सीखा उन्हें सब सिखा हमें।
1: अच्छा
0: गुरु जी ने गावो बजावो और बनावो सब।
1: क्या अगर जब फूट जाए तो यही से मर लो?
0: मर लो।
1: अच्छा काय से मरता अगर फूट जाए तो?
0: जैसे जे बकरा की खा ले बकज्जा की हो जाता जाना बढ़िया गोवा मिल जाए।
1: अच्छा
0: गोवा की वह बढ़िया बोला हाँ। की दाल बांट के
1: अच्छा
0: वो उसे घी से लगा दो
1: हाँ।
0: कड़ाई बना के जो जो जाएगी लस्सी की
1: हाँ।
0: दो तीन आदमी टीरे को चढ़वा दो डांट के।
1: अच्छा
0: दूध ना चढ़ी अंदी
1: ले साहब तो इको फेविकोल भी नहीं चाहे?
0: हाँ हाँ फेविकोल तो फेरे वहाँ के सामने।
1: अच्छा जयते के जाना काम करत? चलो भैया तो देखो आपने कितनी अच्छी बात अपने साथी में बताई। तो जब आपने कहो के सीखो जो सब काम तो जब से आप तो उन्हीं के संगे लगी रहे
0: हो लगाई जाए बिल्कुल तेरे भाई काम करो घर करो रात हाँ। उन्हीं के संगे कर गए।
1: अच्छा घर से कोई मतलब नहीं रहो। चलो भैया जी तो देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई। बस जी आदमी को जी की लगन लग जाए वो आदमी को काम करके रुका
0: रुकता ही है ये लगा हो
1: हाँ।
0: नन्ना गए लो अभी।
1: अच्छा की लो अभी गए
0: हमारे घर अंजन
1: बहु हो
0: हाँ। सो हाँ भज्जी बोले के काय तो आ तो जाना नहीं भजन में
1: जब बहु घरे आ गई
0: कहते कहते कहते तो नहीं जाने
1: हां
0: हमने जाने तो है
1: हां
0: ए बोले मां नहीं जाने
1: हां
0: और अपना लगाओ सावन
1: हां
0: और नाना लगाए के नहीं आप हमारे संग भाग गए
1: ले साहब
0: तीन दिन में लौटी थी।
1: ओहो तो ये तो जब की बात है जब आपको लगन लगी थी लेकिन अब के लड़का भाई आज का नहीं बेकत के हमें तो नन्ना को इंतजार है कब आ रहे। चलो भैया बाबूलाल जी आपने इतनी अच्छी बातचीत करी अपने साथियों से ही खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: हाँ देखो साथियों जी तो हते भैया बाबूलाल जी और बाबूलाल जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी है कि हमने कैसे गावो बजावो सीखो है कितनी मुश्किल से सीख पाओ और काका गाओ थे। और दोस्तों एक के संग अगर आप और भी गाओ थे बजाओ थे और अपनी बात को हम तक रखवो चाह रहे रेडियो से बतावो चाह रहे तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकत। दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है इस प्रकार से 0775-84-81-11। साथियों जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकते के माता दिन भैया हम जो कार्यक्रम गाउत हैं जो देते हैं और जा विधाकों भी गाउत हैं। तो दोस्तों एक विधाकों अपन उजागर कर भी के लाने और साथियों तक पहुंचा भी के लाने और आदमी ये सुन के सीख सकें ई के लाने आप हमसे जरूर संपर्क करें कि आप कैसे नजा आपने सीखी है और काका आप गाउत हैं। तो दोस्तों हमने आपको नंबर बताई दो और ई नंबर पे आप फोन लगा के हमसे सीधी बात कर सकत। और दोस्तों अब एक क्रम में अपन देखो कार्यक्रम को आगे बढ़ाउत भय कार्यक्रम में सुना थे कछु गीतन को और गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

देखो साथियों, जो कितना बढ़िया देवी गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ये गीत को गाए थे भैया भगवान दास पिपरिया वाले। तो साथियों भगवान दास जी के देवी गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में और सुनते हैं एक और बढ़िया से गीत।

लेते हैं गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में। तो आओ दोस्तों सुनाते हैं ये प्यारे से गीत को।